0: और वही सूली आपके पता नहीं कौन से भाग्योदय हुए हैं जो आपके राज्य में वो आ गई। और इस सूली की विशेषता महाराज है कि इस सूली पर जो चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगा, उसे स्वर्ग का सुख मिलेगा और शाश्वत सुख की प्राप्ति उसे होगी। इसलिए महाराज जल्दी करो, शीघ्र करो और अपने व्रत्यों को जो है आदेश दो और मुझे जल्दी सूली पर चढ़ा दे। जैसे ही पंडित जी ने हरिराम ने ये कहा तो राजा ने कहा अच्छा, उसकी महिमा को सुना और जब महिमा को सुना तो कहने लगा इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, इस सूली पर तो पहले मैं चढ़ूंगा क्योंकि मैं इस नगरी का राजा हूं, इसलिए मेरा अधिकार है, इसलिए पहले मैं चढ़ूंगा। उसने कहा नहीं महाराज, आपकी सूली है, आप तो कभी भी इस पर सवार हो सकते हो, ये अवसर मुझे ब्राह्मण को दे दो, आप तो प्रतिपालक हो, गो ब्राह्मण हितायत करके उसने जो है संकेत किया। राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं इतना बेवकूफ थोड़े ही हूं, ध्यान दे लो, इतना मैं बेवकूफ नहीं हूं जो ऐसा सुंदर अवसर अपने हाथ से चला जाने दूं, पहले मैं चढ़ूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है महाराज, आपकी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही आप करो, आपका प्रधानमंत्री भी बड़ा निपुण है। हां हां, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे बाद हमारे प्रधानमंत्री को चढ़ाना, ऐसा मंत्री मिलने वाला नहीं, इसको हम अपने साथ रखेंगे। पंडित जी ने जो है बढ़िया ढंग से षोडशोपचार से उस सूली की जो है पूजा की, राजा और मंत्री को जो है रक्त वस्त्र पहनाए, पुष्पों की माला गले में डाली और जो है, तो ये तो है क्या एक कल्पना, एक कहानी। यह जीव ही जो है राजा है और संसार ही यह वृद्धावती नगरी है, इसमें सारे वृद्ध ही कार्य तो हो रहे हैं, यह संसार वृद्धावती नगरी है, जीव ही इसका राजा है और बुद्धि ही अमुद सिंह नाम का इसका प्रधानमंत्री। और ये पर्यटक जो है वो कौन है, ये आत्मा ही पर्यटक है, जो आत्मा है वही पर्यटक है। हम आत्मा को कलंकित करते, उसे पर आरोप लगाते, उसका हनन करते, और कैसे तो आप सुनते रहते हैं, आचार्य शंकर ने भी लिख दिया, क्या लिखा, सही आत्महा स्वयं विनहंत असत ग्रहात, है ना, सत्य क्या है, सत्य क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या, इसका निर्णय करने में समर्थ नहीं। और जहां ज्ञान होता वहां कामना होती है, कामना ही हमें कहां ले जाती है, सूलों में ले जाती, अयोग्य संबंध कराती। और लेकिन हरिराम जो हरि में रमण करने वाला, जिसने परमात्मा को ही अपना आश्रय तत्व मान लिया है और उसी में जो रत है, उसी के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, उसी के लिए जो है कर्तव्य कर रहा है, तो कहने लगे वही है हरिराम, उसी में ऐसी विद्या आती है, विवेक आता है और उस विवेक के द्वारा वो जो क्या है, उस सूली से बचे, संसार के तापों से रहित हो जाता है और उसका सेवक जो उसके अनुकूल चलने वाला है, तो माने जो विवेकी है और विवेक पूर्वक विद्या का ही आश्रय लेने वाला है वो है हरिराम पंडित, और वो हरिराम पंडित का भी अनुसरण करने वाला जो है वो भी कुशल से, तो कुशल चंद भी बच जाता है, दोनों बच जाते हैं। तो इस प्रकार से यह संसार की स्थिति, इसलिए यहां संकेत किया कि जो हरिराम की तरह से उस आश्रय तत्व को ही जानने की इच्छा रखने वाला, यही है विस्पष्टार्थ रुचि नाम, विस्पष्ट रुचि वाला। तो विस्पष्ट रुचि क्या, विशेष रूप से जो स्पष्ट रुचि है वो क्या है, तो आप सुन चुके, मैं हूं, मैं बना रहा हूं, मुझे कोई मिटाए नहीं और मैं जानता हूं, जानता रहूं, हैं, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बनाए और मैं सुखी हूं, सुखी बना रहा हूं, मेरे सुख को कोई छीने नहीं, ये कहां से आ रहा, इसका आश्रय तत्व क्या, तो वही सच्चिदानंद है, वही हृदय में विद्यमान। ऐसे उसको जानने के लिए, ऐसे उसका अनुभव करने के लिए जो क्या है माने जिज्ञासु है, या उसी के लिए जो तत्पर है, हैं, तत्पर तो हम लोग जो है सुनते रहते हैं, क्या श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। तो तत्परा, तो तत्शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा ही किया गया, माने सर्वज्ञ तो विशिष्ट आदि कह देते हो वेदांत की भाषा में, माने परमात्मा। और उसके पराये रहे जो तत्परा, ये नहीं कहा खाम परा, भोग परा, धन परा नहीं कहा, वहां क्या कहा? तत्परा। और संयतेन्द्रिय, जो संयम से चलने वाला है, संयत रखने वाला था, राग द्वेष से रहित होकर के, तो इस प्रकार से जो विवेकी साधक है और जो जिसने इतनी साधना यहां तक कर ली है, उसके लिए यहां कह रहे हैं कि विस्पष्टार्थ रुचि ना, जो ऐसे विस्पष्ट रुचि वाला है, ऐसे उस विस्पष्ट रुचि वाले के लिए आचार प्रसादतः, आचार की प्रसन्नता से, जो आचार्य अपने हृदय को ही देने में लगा था, उसके जो समर्पण हो गया, उसके हृदय की जो रक्षा करने में तत्पर है, वह है आचार्य। ऐसे उस आचार्य की प्रसन्नता से, ऐसे उनकी कृपा से, और मैं क्या करने जा रहा हूं? तो कहने लगे तैतिरीय उपनिषद का जो सार है, वो सार की व्याख्या करने जा रहा हूं। ये संकेत किया, अब आगे चर्चा कल कर।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: देवत्वष्टर्भूरिते सज्ञे सामेतु सलक्ष्मा यद्विशु रूपं भवाति
1: देवत्रायन्तमवासे सखायो नुत्वा माता पितरो मदन्तु
0: समुद्रं गच्छ स्वाहा देवज्ञ सवितारं गच्छ स्वाहा अन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणो गच्छ स्वाहा अहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दाज्ञसि गच्छ स्वाहा द्यावा पृथिवी गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा नभो दिव्यं गच्छ स्वाहा अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मेहार्द्यच्छ दिवन्ते धूमो गच्छ त्वन्तरिक्षं ज्योतिः पृथिवीं भस्मनापृणः स्वाहा मापो मौषाधीर्हिज्ञासीर्धाम्नो धाम्नो राजग्रस्ततो वरुणनो मुञ्च यदाहुरज्ञा इति वरुणेति शपामहे ततो वरुणनो मुञ्च सुमित्रिया न आप ओषाधयः सन्तु दुर्मित्रियास्त।

चादुरितं मयि यद्वाहमाभिदुद्रोह यद्वा आशेप उतानृतम् हविष्मातीरिमा आपो ओ हविष्मा आवीवासति हविष्मा अन्देवो अध्वरो हविष्मा आँ अस्तु सूर्याः अग्नेर्वोपन्न गृहस्य सदासि साधयामि इन्द्राग्न्योर्भा आगधेयी स्थमित्रावरुणयोर्भागधेयी स्थ विश्वेशान् देवानाम् भागधेयी स्थ अमूर्या उपसूर्येयाभिर्वासूर्यः सह तानो हिन्वन्त्वध्वरम् हृदे त्वा मनासे त्वा दिवे त्वा सूर्या आयत्वा ऊर्ध्वो अध्वरन्ति विदेवेषु होत्र आयच्छ सोमा राजन् विश्वास्त्वं प्रजा उपावारोह विश्वास्त्वां प्रजा उपावारोहन्तु शृणोत्वग्निः समिधाहवं मे शृण्वन्त्वापोधिशनाश्च देवीः श्रोताग्रावाणो विदुषो न यज्ञज्ञ

गूर्ता अमृतस्य पत्नीः तादेवीर्दे भत्रे मै यज्ञन्नायतोपाहूताः सोमस्य पिबत माभेर्मा संविक्था ऊर्जन्धस्वधिशाने वीड्वी सती वीलये।

0: ശിവായ. You're listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: और वहां जाते आपने उस दृश्य को पहली बार देखा, 25 वर्ष पहले देखा नहीं था, वो हो गया क्या? प्रत्यक्ष. समझ गए ना? वो क्या हो गया? क्योंकि पहली बार देखा इसलिए वो प्रत्यक्ष हो गया है. और आपको एक अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया प्रत्यक्ष से कि यहां ये वस्तु है, ऐसा है, ऐसा है. उसका सारा इंफॉर्मेशन, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान आपको प्राप्त हो गया. एक नया संस्कार पड़ गया. उसके बाद उस व्यक्ति ने एक दूसरे जगह ले गया, कहा आपको अब दूसरी जगह ले जाता हूं. तो जब उस दूसरे जगह लेके चला गया तो वो जगह आप 25 वर्ष पहले भी गए थे. 25 वर्ष पहले भी वैसे ही था, क्योंकि पुरातत्व वस्तु था, वो पुरातन वस्तु. पुरातत्व विभाग के द्वारा उसमें कोई नया परिवर्तन और छेड़खान करने का अधिकार नहीं था. कानूनतः पुरातत्व यही कहता है कि जो जैसा है वैसे ही उसका संरक्षण करो, ये कहता है. उसमें परिवर्तन नहीं करना नहीं देता है वो. वहां ले जाकर खड़ा कर दिया तो उसको देखते ही आप फट से कहने लगे, अरे इसको तो मैं 25 वर्ष पहले भी देखा था. आप देख लो, वह प्रत्यक्ष न होकर वो जो दिखाई दिया प्रत्यक्ष, हालांकि वह आज भी प्रत्यक्ष हुआ है, 25 वर्ष पहले भी वह प्रत्यक्ष हुआ था. 25 वर्ष पहले जिस रूप में प्रत्यक्ष हुआ था आज भी उसी रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है. आंखें से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, रोशनी में देख रहे हैं, शंका भी नहीं है, संशय भी नहीं है, वो वस्तु है. लेकिन पहले वाले दृश्य में और इस दूसरे दृश्य में अंतर क्या हुआ? पहले देखे हुए का वो आपको संस्कार बन गया. आज वह वस्तु देखते ही एक प्रतिविज्ञा जो थी वो प्रतिविज्ञा बन गई और आप कहने लगे कि ये वस्तु को तो मैंने 25 वर्ष पहले देखा था. 25 वर्ष पहले मैंने जिस रूप में जैसा जहां देखा था वो वस्तु आज 25 साल के बाद भी वहीं उसी रूप में वैसा ही विद्यमान है. इसको 25 वर्ष पहले मैंने देखा था, ये स्मरण नहीं होगा, ये प्रतिविज्ञा होगी. बात समझ गए कि नहीं? ये क्या होगा? प्रतिविज्ञा. स्मरण कब होगा? आप जो पहली बार पहला दृश्य देखे उसका आपको अनुभव हुआ, आप वापस आ गए घर और दूसरों से चर्चा करने लगे. उस चर्चा करने के दौरान आपने आज फलाने ने मुझे एक जगह ले गया, कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा मैंने, क्या अद्भुत दृश्य, क्या अद्भुत वस्तु बना हुआ है, गजब का है. ये आप दूसरों को जो सुनाते हो तो वह स्मरण के द्वारा सुनाते हो, प्रतिविज्ञा के द्वारा नहीं सुनाते हो. वहां प्रतिविज्ञा काम नहीं करती है, केवल स्मृति काम करती है. प्रतिविज्ञा वहां काम करती है, जैसे ये कल देखा था आपने और आज भी इस रूप को यहां देख रहे हैं, तब उसके बीच में जो आपको एक ज्ञान होता है कि ये कल भी देखा था, ये वस्तु कल जो देखा था वही वस्तु आज है, ये वस्तु आज भी प्रत्यक्ष कल भी प्रत्यक्ष हो रहा था, तो दो प्रत्यक्षों के बीच में एक रूपता करने वाला प्रतिविज्ञा है. जैसे ये नोट भी कल देखा था और ये पेपर वेट भी आपने कल देखा था, लेकिन इन दोनों के बीच में एकता कराएगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में प्रतिविज्ञा संभव नहीं है. स्मृति होगी, कल देखा था, ये नोट की प्रतिविज्ञा होगी, पेपर वेट की प्रतिविज्ञा, कल के पेपर वेट और आज के पेपर वेट के बीच में प्रतिविज्ञा संभव है. कल देखा हुआ नोट और आज के देखा हुए नोट में प्रतिविज्ञा संभव है, लेकिन कल देखा हुआ पेपर वेट और आज देखा हुआ नोट के बीच में प्रतिविज्ञा संभव नहीं होता, ये ध्यान रख लेना. क्योंकि प्रतिविज्ञा का मतलब होता है एक ही वस्तु की निरंतरता नित्यता सिद्ध करने वाला जो ज्ञान है उसी को प्रतिविज्ञा कहते हैं। वस्तु के परिवर्तन करने वाला ज्ञान, भिन्नता सिद्ध करने वाला ज्ञान को प्रतिविज्ञा नहीं कहते। ये प्रतिविज्ञा आपको नया सब्जेक्ट सुनने को मिल रहा है, ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ही इस प्रतिविज्ञा का प्रयोग हुआ है। ये स्वतंत्र प्रतिविज्ञा दर्शन ही वेदांत में महत्वपूर्ण दर्शन है। तो ये छठे श्लोक में जो प्रतिविज्ञा आत्मा के बारे में, एक तो नित्यता सिद्ध करने के लिए प्रतिविज्ञा और दूसरा एक रूप सिद्ध करने के लिए प्रतिविज्ञा, ये प्रतिविज्ञा ही आत्मा की एक रूपता सिद्ध करता है और प्रतिविज्ञा ही आत्मा के नित्यता को भी सिद्ध करता है। यह प्रश्न ये हुआ सातवें श्लोक के आरंभ से पहले, प्रत्यभिज्ञा बलाद आत्मा स्थायी निर्धार्यते यदि का नाम प्रत्यभिज्ञा किं वा तस्यः प्रयोजनम्। आपने छठे श्लोक में प्रत्यभिज्ञा के बल से, प्रत्यभिज्ञान के बल से आत्मा को स्थायी माना यानी नित्य माना और आत्मा को एक सिद्ध किया। अब हमारे मन में यह जिज्ञासा होती है कि का नाम प्रतिविज्ञा, ये प्रत्यभिज्ञा मतलब क्या है, प्रतिविज्ञा क्या चीज है। प्रत्यभिज्ञा से आत्मा को नित्य और एक सिद्ध किया, तो पहले तो ये प्रतिविज्ञा क्या चीज है ये हमको समझ में नहीं आ रही है, प्रतिविज्ञा का लक्षण समझाइए। और किं वा तस्य प्रयोजनम्, प्रतिविज्ञा का प्रयोजन क्या है। तो प्रतिविज्ञा के बारे में दो चीज से अवगत होना चाहता है जिज्ञासु, पहले तो प्रतिविज्ञा का लक्षण से परिचित होना चाहता है, दूसरा प्रतिविज्ञा से प्रयोजन क्या है ये प्रयोजन से परिचित होना चाहता है। प्रतिविज्ञा मानकर क्या प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है, यानी प्रतिविज्ञा के द्वारा हम मुमुक्षुओं के जीवन में कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, ये दो चीज जानना चाह रहा है जिज्ञासु। जैसे गुरु ने कहा कि आज मुझे गाय के दूध पीने की इच्छा है, तुम जाओ जंगल में से गाय का दूध लेकर आओ। जंगल में से ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग करता हूं कि ये आज के जमाने की बात नहीं थी, पहले के जमाने की बात थी कि गाय कोई गृह पशु की तरह घर में बंदी बनाकर नहीं रखा जाता था, तो स्वच्छंद जंगल में विचरण करने वाली होती थी और जिसको दूध की आवश्यकता हो तो वह जंगल से ही दूध लेकर आते थे, गाय का दूध लेकर आते थे। तो गुरु ने कहा कि जाओ गाय का दूध लेकर आओ, गाय का ले आना, आज निर्जला एकादशी है, हम भैंस का दूध नहीं पिएंगे, है गुरुजी ने कहा, गाय का ही ले आना। अब शिष्य ने कहा कि गाय का दूध, गाय कैसी होती है तो हमको तो पता नहीं महाराज, गाय तो हम जानते नहीं है, है? गाय किसको कहते हैं, कैसी होती है गाय हमको तो पता नहीं महाराज। तो गुरुजी ने गाय का एक लक्षण बता दिया कि गाय, जाओ गाय सिंह वाली होती है, है? गाय का लक्षण क्या बना दिया, सिंह वाली होती है गाय, गौर श्रृंगत्तम गौर लक्षणम, है सिंह होना गाय का लक्षण है बता दिया। और वो चला गया जंगल में, संयोग से एक भैंस खड़ा था, उसके सिर में देखा कि सिंह है कि नहीं, सिंह दिखाई पड़ा तो लक्षण मिल गया कि नहीं। जिसके सिर में सिंह हो उसको गाय कहते हैं, इतने लक्षण लेकर वह गाय को खोजने निकला, सामने भैंस दिखाई पड़ा, देखा उसके सिर में सिंह है कि नहीं, देखा बड़े बड़े सिंह थे, तो बोले हां गाय मिल गया, तो गाय का दूध निकालने लग गया वो, भैंस का दूध निकालने लग गया वो। तो दूसरा व्यक्ति सामने आ गया, अरे क्या कर रहे हो आज, बोले आज गुरुजी की इच्छा हो गई, निर्जला एकादशी है, गाय के दूध पीने के लिए कह रहे हैं, गाय का दूध निकाल रहा हूं। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह गाय है, कैसे निश्चय किया तुमने कि ये गाय है? बोले और क्या, गुरुजी ने लक्षण बनाया था जिसके सिर में बड़े सिंह हो, अब गुरुजी ने सौराष्ट्र गाय का लक्षण बना दिया होगा, बड़े बड़े सिंह होते हैं सौराष्ट्र के गाय के, जिसके सिर में बड़े बड़े सिंह हो वो गाय है, देख लो इसके सिर में सिंह है, इसका मतलब गाय है, लक्षण मिल गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये जो लक्षण है ये अपूर्ण लक्षण है, ये लक्षण पूरा लक्षण नहीं है। गाय के किसी माने लक्षण गाय के लिए बनाया गया है और वो लक्षण गाय के अलावा भैंस में भी चला गया, तो ये लक्षण को अतिव्याप्ति दोष वाला लक्षण कहते हैं, ये अपूर्ण लक्षण है, ये पूरा लक्षण नहीं है। लक्षण जब अपूर्ण होता है तो इसी तरह धोखा हो जाता है, लक्षण पूर्ण होना चाहिए तभी धोखा नहीं होगा, अधूरा लक्षण जो है उसमें धोखा होने की संभावना है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था लक्षण, वो लक्षण में अतिव्याप्ति दोष हो गया, जिस लक्ष्य में रहना चाहिए था उस लक्ष्य से अतिरिक्त भी जो तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है वहां पर भी लक्षण चला गया, ये अतिव्याप्ति दोष। परिणाम भैंस को गाय मानते हुए दूहने लग गया, तो वो दूसरे व्यक्ति ने निषेध कर दिया कि भैंस है गाय नहीं है, ये बोले लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, तो जाओ गुरुजी से दूसरा लक्षण बना के आओ, ऐसे लक्षण से तो तुम बार बार धोखे खा जाओगे। वो वापस कर चला गया, गुरुजी से कहने लगा। गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है, दूध नहीं लाए, गाय नहीं मिली तुमको? तो गुरुजी आपने जो लक्षण बनाया था लक्षण के अनुरूप एक पशु मिला तो था, लेकिन संयोग से वो लक्षण भैंस के सिर में चला गया, तो भैंस में चला गया तो अतिव्याप्ति दोष हो गया। किसने कहा तुम्हें ये लक्षण गलत हो गया करके? बोले फलाना व्यक्ति ने कहा है। बोले उसने ठीक कहा है, उसने पढ़ा था तुम नहीं पढ़े थे इसीलिए फर्क आ गया। तो ठीक कहा है कि वो लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित होने के कारण लक्ष्य को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होगा। तो अब दूसरा लक्षण बना के देता हूं तुमको, जाओ। तो कैसा लक्षण? गोर कपिलत्वम, तो कपिला कलर होना ये गाय का लक्षण है, जाओ। अब ये लक्षण लेकर चला गया, सामने भैंस खड़ी थी तो सिर में सिंह भी था, लेकिन मिलाने लगा कपिलत्व तो नहीं है, या तो बिल्कुल काली है कपिला नहीं है, छोड़ दिया। फिर दूसरी जगह चला गया तो गाय खड़ी थी, गाय खड़ी थी सिर में सिंह भी था, और संयोग से वो गाय बिल्कुल सफेद थी धवल थी। और गुरु जी ने लक्षण क्या बनाया था? गाय कपिला होती है, और यहां गाय खड़ी है तो वो लक्षण नहीं मिल रहा है ना, वहां कौन सी गाय खड़ी है सफेद कलर वाली, लक्षण नहीं मिल रहा है, तो वो छोड़ दिए, छोड़कर जा रहा है। मुझे तो गाय का दूध लेना है, तो गाय है ही नहीं, क्यों नहीं है गाय, लक्षण नहीं मिल रहा है, क्यों कह रहे हो लक्षण नहीं मिल रहा है? बोले गुरुजी ने कपिला कलर कहा था, ये तो बिल्कुल सफेद है, गाय नहीं है। बोले गुरुजी ने जो दूसरा लक्षण बनाया वो अव्याप्ति दोष से दूषित था, यह भी अधूरा लक्षण है। पहला लक्षण भी अधूरा है इसलिए क्योंकि अतिव्याप्ति हो गया, दूसरा लक्षण भी अधूरा है क्योंकि अव्याप्त हो गया, यावत गाय में नहीं गया। तुम्हारा लक्ष्य है गाय, लक्षण बनाया कपिला, तो सारी गाय कपिला होती है ये नियम तो है ही नहीं, सफेद भी होती है काली भी होती है चितकबरे भी होते हैं कि नहीं, चितकबरे भी होते हैं, तो गाय मात्र में लक्षण न जाने के कारण इसको अव्याप्ति दोष वाला लक्षण मानते हैं। इस दोष वाले लक्षण से भी व्यक्ति धोखे में रहते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति धोखे में आ गया, सामने गाय खड़ी है, प्राप्त होने पर भी लक्षण न मिलने के कारण अप्राप्त होता हुआ निकल रहा है। आप लोगों को भी यही हो रहा है, हाँ, आप लोगों ने परमात्मा के बारे में एक जो लक्षण बना रखा है, बात समझ रहे ना, भगवान के बारे में परमात्मा के बारे में एक लक्षण बना रखा है, वो लक्षण सर्वत्र नहीं मिलता है, तो प्राप्त हुआ हुआ परमात्मा भी आपसे अप्राप्त ही बना हुआ है आज तक। तो आपने लक्षण क्या बना रखा है? बंसी विभूषित करान्नव नीरदा भात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिसके हाथ में बंसरी हो, टेढ़ी टांग वाला हो, है जो जब भी खड़ा होए तो टेढ़ी टांग से खड़ा होए, एक टांग के ऊपर दूसरा टांग लगाए, टेढ़ा खड़ा होवे, हाथ में बांसुरी लेवे, सिर में मोर मुकुट होवे, शरीर में पीला वस्त्र धारण किया हुआ हो, जिसके ओट लाल हो, जिसके शरीर नीरदाभात है, नया मेघ की तरह श्याम वर्ण का हो, आपने ये लक्षण बना लिया। और वो इस हॉल में ये लक्षण से नहीं बैठा है, वो इसी हॉल में बैठा है, लेकिन ये लक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई हाथ नहीं जोड़ता है, राम राम भी नहीं करता है। ले जी, ये सब क्या है? वही तो है जो तुम खोज रहे हो, लेकिन ये जो सामने प्राप्त है ये सब वही कृष्ण, तुमने कृष्ण का परमात्मा का जो लक्षण बनाया वो यहां नहीं मिल रहा है ना। मैं यदि मोर मुकुट लगा दूं, पीताम्बर पहन लूं, हाथ में बांसुरी लूं, टेढ़े टांग करके यहां खड़े हो जाऊं, तो आप दरवाजे से खड़े होते, हे कृष्ण देखो कृष्ण खड़े हैं। आज तो गुरु जी कृष्ण बन गए हैं। ले जी, अरे गुरु तो आज भी कृष्ण ही है, कल भी कृष्ण था और कल भी रहेगा। कपड़ा पहनेगा तो भी कृष्ण है, नंगा रहेगा तो भी कृष्ण है, लाल कपड़ा पहनेगा तो भी कृष्ण है, काला कपड़ा पहनेगा तो भी कृष्ण है। लेकिन आपने जो लक्षण बनाया है उस लक्षण से आप हटोगे नहीं, वो लक्षण अव्याप्ति दोष वाला है। तुम्हारा लक्ष्य कृष्ण है, मोर मुकुट नहीं है। तुम्हारा कृष्ण लक्ष्य कृष्ण है, बांसुरी नहीं है। लेकिन तुमने लक्षण क्या बना? बांसुरी वाला ही कृष्ण होता है, बिना बांसुरी का कृष्ण होता नहीं। ले जी, तुलसीदास जी ने तो ये कर दिया ना, वृंदावन में चले गए भगवान के दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी का दर्शन सब लोग कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, और तुलसीदास जी हाथ भी नहीं जोड़ रहे हैं। सब लोगों ने कहा तुम यहां क्यों आए हो? बोले सबने कहा कि भगवान यहां है, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूं। तो फिर दर्शन नहीं किया? बोले नहीं। क्यों? बोले भगवान ही नहीं है तो मैं कहां से दर्शन करूं। बोले क्या बात करते हो तुम लोग, बाकी बिहारी सामने खड़े हैं, दर्शन हो रहा है। नहीं भाई, मेरे परमात्मा तो वहां खड़े ही नहीं है। तुलसीदास जी ने तो क्या लक्षण बनाया था परमात्मा के? धनुष्बाण, हाथ में धनुष्बाण लिया हुआ हो वो परमात्मा है। अब वही राम बांसुरी लेकर बैठा हुआ है तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका एक लक्षण था, वो लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित था, अव्याप्ति दोष। अब परमात्मा में कृष्ण में वो लक्षण नहीं गया तो परमात्मा को मानने को तैयार नहीं है वो। सब लोग चले गए, मंदिर बंद होने का समय हो गया। पुजारी ने कहा कि बाबा जाओ, दर्शन हो गया ना, जाओ। बोले नहीं हुआ है। तुलसीदास जी कहते दर्शन ही नहीं हुआ है, सब लोग चले गए, दर्शन यही तो भगवान है। बोले मैं कैसे मानूं, हाथ में धनुष्बाण ही नहीं है तो मैं कैसे मानूं। तब तुलसीदास जी हट करके बैठ गए, तब झक मारकर परमात्मा को भी धनुष्बाण उठाना ही पड़ा। तो पुजारी पर्दा लगा इधर उधर चला गया। थोड़ी देर के बाद तुलसीदास जी ने कहा कि अरे पुजारी जी दर्शन नहीं हुआ भगवान का, दर्शन कराओ। तो भगवान समझ गए कि इसका जो हट है उसके इच्छा के अनुसार हमको भी काम करना चाहिए, तो उन्होंने धनुष्बाण लेकर खड़े हो गए, पर्दा हटा दिया। आश्चर्य की बात है, तुलसीदास जी को धनुष्बाणधारी परमात्मा दिख रहे हैं, पुजारी को बंसीधारी वे भंके बिहारी दिख रहे हैं। ले देख ले, वही तो है ये। बोलते आ हा हा हा, तुलसीदास प्रसन्न, धनुष साष्टांग दंडवाद कर रहे हैं, आ जय हो परमात्मा, जय हो, बड़ी कृपा हुई है, आज आपका दर्शन मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न होकर भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, पुजारी बांके बिहारी का दर्शन कर रहा है। कहते हैं मूर्ख, बांके बिहारी तो वही का वही है, ये तो भावना से सिद्ध हुआ। लक्षण तो हम लोग जो लक्षण बना रहे हैं वो तुलसीदास जी के जैसे ही लक्षण बना रहे हैं, और यही है कि तुलसीदास के सामने तो भगवान झुक गए, हमारे सामने झुकते नहीं, इसलिए कहते हैं कि भगवान नहीं गए। कल ही हमसे किसी ने पूछा था कि कुछ लोग कहते हैं महाराज यहां हमको भगवान का दर्शन हो गया है, महाराज क्या आपको भी दर्शन हुआ है? है? हमसे पूछा था कल किसी ने, आपको भी हुआ है? अरे भाई कौन से भगवान की बात करते हो भाई, हम तो उस भगवान को भगवान का दर्शन करते हैं कि जो सारे नाम रूप में अनाम अरूप के रूप में बैठा है, उसका दर्शन कर रहे हैं। हम तो अस्थिवासी प्रिय भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया होगा पता नहीं कैसा नाम और रूप का भगवान का दर्शन किया होगा, तो झूठा भगवान का दर्शन किया है भाई। बात समझ गए कि नहीं? ये वेदांत का रहस्य है, नाम और रूप ये मायाकृत है, और नाम और रूप वाला भगवान का दर्शन किया है तो ये झूठा भगवान का दर्शन किया है, और नाम और रूप को बात करके यदि दर्शन करोगे तो हम तो नाम रूप का बात करके भगवान का दर्शन करके बैठे हुए हैं, हम तो अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अस्थिवासी प्रिय ये यही भगवान है, इसके अलावा कौन सा भगवान चाहते हो तुम? तो गोर कपिलत्वम, तो काली गाय सफेद गाय खड़ी थी लेकिन गाय नहीं मिल रहा है, उसको पूछ रहा है अरे मुझे आज गाय का दूध लेना है, गुरु जी को गाय का दूध पिलाना है, गाय खोज रहा हूं नहीं मिल रही। तो सामने वाले ने कहा ये खड़ी तो है गाय। बोले ये कैसे गाय हो सकती है? बोले गाय है ये। बोले लक्षण नहीं मिल रहा है। कौन सा लक्षण? कपिलत्व, ये तो सफेद है, लक्षण है कपिला, कपिला गाय नहीं है। अरे किसने कह दिया कि गाय कपिला होती है? होती है, ऐसा नहीं है कि कपिला होती ही नहीं है, लेकिन कपिलत्व अव्याप्ति दोष वाला लक्षण है। जाओ फिर लक्षण पूछकर आओ, शुद्ध लक्षण, बार बार धोखा हो रहा है तुमको। दोबारे गुरु के पास गया, गुरु जी ने पूछा कि क्या हुआ, गाय नहीं मिली, दूध नहीं लाए? बोले नहीं मिली महाराज। अरे जंगल में तो गाय जिधर देखो उधर ही है। बोले आपने जो लक्षण बताया मिली नहीं गाय। एक ने कहा कि ये गाय है लेकिन आपका लक्षण नहीं मिल रहा था, वो तो सफेद है, आपने कहा था कपिला, तो मैं कैसे लाता? तो गुरु जी ने कहा फिर तीसरी बार में, गोहो एक सफवत्वम, जिसके खूर नहीं फटा हो वो गाय है। अब गया जंगल में, गाय खड़ी थी, देखता है सबके टांग में सबके खूर फटे हुए हैं, दो हैं, दो फांका हैं खूर के, घूमता हुआ गया, गाय सामने खड़ी है, छोड़ दिया क्योंकि लक्षण नहीं मिल रहा है। एक सफवत्व, तो एक ऊंट खड़ा था उसके पांव में देखा, एक गधा एक गधी खड़ी थी उसके पांव में देखा, है यहां तो गाय गाय है, हैं ऊंट भी गाय और गधा भी, क्योंकि लक्षण मिल रहा है कि नहीं? एक सफवत्व, उसके खूर फटे हुए नहीं होते, गधे के भी नहीं फटते, घोड़े के भी नहीं और ऊंट के भी नहीं, हैं? मिल गया गाय, मिल गया, बड़े प्रसन्न होके गधी को रोक रहा है दूध निकालने के लिए। दूसरे व्यक्ति ने फिर देख लिया, क्या कर रहे हो? बोले गाय के दूध निकाल रहा हूं। अरे किसने कह दिया ये गाय है? बोले लक्षण मिल रहा है देखो, एक सफवत्व। अरे बेटा ये तो असंभव लक्षण है, ये तो संभव ही नहीं है। एक सफ वाला लक्षण लेकर तुम गाय खोजने जाओगे तीन काल में, संभव ही नहीं है। जाओ गुरु से फिर कहो कि शुद्ध लक्षण बनाकर दो। तो रोता हुआ गया, गुरु जी आप मुझे बार बार भटका रहे हो, सही लक्षण बनाकर

0: गले में एक गलकम्बल होता है, झोल होता है झुलता हुआ, वो गाय है। अब ये और किसी में भी नहीं होता है, भैंस में भी नहीं, गधे में भी नहीं, ऊंट में भी नहीं, और ये झुलता हुआ कम्बल जो झुलता हुआ है उसको सासन बोलते हैं संस्कृत भाषा में। वह काली गाय में भी मिलता है, सफेद में भी मिलता है, और चितकबरे में भी मिलता है, कपिला में भी मिलता है, गाय के अलावा और जगह नहीं मिलता, यावत गाय में रहता है गाय। ये जो है शुद्ध लक्षण है, तब जाकर गाय उसको प्राप्त होता है, तब वो धोखे में नहीं रहता। तो यहां आपने प्रतिविज्ञा की जो बात कही है कि दो वस्तुओं में एकता सिद्ध करने के लिए पहले देखे हुए वस्तु में और आज देखे हुए वस्तु में, ये वही है, ये सिद्ध करने के लिए प्रत्यभिज्ञान आपने कहा। प्रत्यभिज्ञान से दो चीज सिद्ध होता है, एक तो आत्मा की नित्यता सिद्ध हो जाता है, दूसरा आत्मा की अद्वितीयता सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये प्रत्यभिज्ञान का लक्षण क्या है, वो लक्षण हमको ठीक से बता दीजिए, उसके बारे में कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Idangadi Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankar Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारत के महान संत जिनका नाम किरण कड़ियार है, उनकी कहानी सुनेंगे। तमिलनाडु की यह कथा अत्यंत प्राचीन है। चेरभूमि में कोनाडु राज्य की राजधानी कोडमपालूर नगरी थी। आदित्य चोल के पूर्वज किरण कड़ियार कोडमपालूर से अपने राज्य का संचालन करते थे। उनके जीवन का लक्ष्य था प्रभु की भक्ति और संतों की सेवा। उन्हीं के राज्य में शिव भक्त थे, जिनके जीवन की साध थी कि हर हालत में प्रतिदिन शिव भक्तों को भोजन कराना। जब अपने पास साधन समाप्त हो गया तो भक्तों को भोजन कराने के लिए राजा के एक कोठार से, कोठार यानी उनकी धन जहां एकत्र किया जाता है या फिर जहां पर संचालित किया जाता है वह स्थान, कोठार से वे उनसे धन या धान चुराने लगे। राज कर्मचारियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़कर राजा इडन कलियार के समान प्रस्तुत किया। राजा ने उससे प्रश्न किया, आप शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में क्यों धान चुरा रहे हैं? शिव भक्त बोले, मैंने प्रभु के भक्तों को भोजन खिलाने का व्रत ले रखा है। उस व्रत को निभाने में बाधा आने पर, ऐसा करने पर मजबूर हूँ। इडन कलियार इस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हुए, भक्त की प्रशंसा करते हुए बोले, आप ही हमारे लिए सच्चे भंडार हैं और सेवा धन को निभाने के लिए उनकी आवश्यक सेवा और सहायता की। प्राचीन शिलालेखों से पता चलता है कि देवस्व और राजस्व के रूप में धान के अलग अलग भंडार होते थे। राजकीय कर नकद या धान के रूप में दिया जा सकता था। अधिकतर कृषक धान के रूप में कर देते थे। स्थान स्थान से प्राप्त धान को लाद कर राजधानी ले जाना लाभप्रद नहीं था, अतः राज्य की ओर से जनकल्याण से के किसी भी सेवा कार्य तथा मजदूरों को मजदूरी देने आदि के लिए कोठार में जमा धान का उपयोग किया जाता था। राजा के कोठार से संतों को भोजन कराने के लिए धान देने वाले शिव भक्त का तप भी अद्भुत था। उन्होंने निर्बाध भाव से कहा, संतों को जब भोजन नहीं मिलता तो उन्होंने खिलाने का कर्तव्य राजा का होता है। हर कोई फरियाद लेकर राजा के पास नहीं पहुँच सकता, विशेषकर संत लोग अपने किसी पाप के लिए राजा के द्वार पर नहीं जाएंगे, ये तो अपनी भूख की चिंता भी नहीं करते। यदि ऐसे संतों को भूखा रखा जाए तो यह स्थिति राजा और राज्य के लिए अनिष्टकारी होगा, यहाँ तक कि राज्य ही नष्ट हो सकता है। इसलिए संतों की भूख मिटाने के लिए मैंने राजकोष से दान का उपयोग करना पुण्य का कार्य समझा। राजा

0: इस तर्क से खुश हुए। इस तर्क को हम चाहे स्वीकार न करें, पर राजा इडन कलियार ने इसे ज्ञान का मार्ग समझा और सादर नमस्कार करके कहा, धान से भरा भंडार ना भंडार है, गुणों से भरे आप भी हमारे लिए सच्चे भंडार हैं। समाज के सम्यक संचालन के लिए कर्म का लक्ष्य और कर्म का मार्ग दोनों महत्वपूर्ण है। शिव भक्त ने उस प्राचीन काल में अपने लक्ष्य को ही महत्व दिया। इस पौराणिक गाथा में भक्त की असीम निष्ठा और राजा का संतों और भक्तों के प्रति विनय का भाव प्रमुख है। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

माहिर्भूर्मा प्रदाकुः नमस्त आताना नर्वा प्रेहि घृतस्याकुल्या उपारतस्य पथ्या उप देवी ईरापशुद्धा वो ओढ्वज्ञा सुपारिविष्टा देवेषु सुपारिविष्टा वयं पारिवेष्टारो भूयास्म वाचन्ते।

हिन्वन्त्वध्वरम् हृदे त्वा मनासे त्वा दिवे त्वा सूर्या आयत्वा ऊर्ध्वो अध्वरं दिवि देवेषु होत्र आयच्छ सोमा राजन् विश्वास्त्वं प्रजा उपावारोह विश्वास्त्वां प्रजा उपावारोहन्तु शृणोत्वग्निः समिधाहवं मे शृण्वन्त्वापो धिशनाश्च देवीः श्रोताग्रावाणो विदुषो न यज्ञ

ओगूर्ता अमृतस्य पत्नीः तादेवीर्देवत्रे मयि यज्ञन्नायतोपाहूताः सोमस्य पिबत माभेर्मा संविक्था ऊर्जन्धस्वधिशाने वीड्वी सती वीलये था।

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: और वहां जाते आपने उस दृश्य को पहली बार देखा, 25 वर्ष पहले देखा नहीं था, वो हो गया क्या? प्रत्यक्ष. समझ गए ना? वो क्या हो गया? क्योंकि पहली बार देखा इसलिए वो प्रत्यक्ष हो गया है. और आपको एक अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया प्रत्यक्ष से कि यहां ये वस्तु है, ऐसा है, ऐसा है. उसका सारा इंफॉर्मेशन, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान आपको प्राप्त हो गया. एक नया संस्कार पड़ गया. उसके बाद उस व्यक्ति ने एक दूसरे जगह ले गया, कहा आपको अब दूसरी जगह ले जाता हूं. तो जब उस दूसरे जगह लेके चला गया तो वह जगह आप 25 वर्ष पहले भी गए थे. 25 वर्ष पहले भी वैसे ही था, क्योंकि पुरातत्व वस्तु था, वो पुरातन वस्तु, पुरातत्व विभाग के द्वारा उसमें कोई नया परिवर्तन और छेड़खानी करने का अधिकार नहीं था. कानूनतः पुरातत्व यही कहता है कि जो जैसा है वैसे ही उसका संरक्षण करो, ये कहता है. उसमें परिवर्तन नहीं करना नहीं देता है वो. वहां ले जाकर खड़ा कर दिया. तो उसको देखते ही आप फट से कहने लगे, अरे इसको तो मैं 25 वर्ष पहले भी देखा था. आप देख लो, वह प्रत्यक्ष न होकर वह जो दिखाई दिया प्रत्यक्ष, हालांकि वह आज भी प्रत्यक्ष हुआ है, 25 वर्ष पहले भी वह प्रत्यक्ष हुआ था. 25 वर्ष पहले जिस रूप में प्रत्यक्ष हुआ था, आज भी उसी रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है. आंखें से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, रोशनी में देख रहे हैं. शंका भी नहीं है, संशय भी नहीं है, वो वस्तु है. लेकिन पहले वाले दृश्य में और इस दूसरे दृश्य में अंतर क्या हुआ? पहले देखे हुए का वो आपको संस्कार बन गया. आज वो वस्तु देखते ही एक प्रतिविज्ञा जो थी वो प्रतिविज्ञा बन गई और आप कहने लगे कि ये वस्तु को तो मैंने 25 वर्ष पहले देखा था. 25 वर्ष पहले मैंने जिस रूप में जैसा जहां देखा था वो वस्तु आज 25 साल के बाद भी वहीं उसी रूप में वैसा ही विद्यमान है. इसको 25 वर्ष पहले मैंने देखा था, ये स्मरण नहीं होगा, ये प्रतिविज्ञा होगी. बात समझ गए कि नहीं? ये क्या होगा? प्रतिविज्ञा. स्मरण कब होगा? आप जो पहली बार पहला दृश्य देखे उसका आपको अनुभव हुआ, आप वापस आ गए घर और दूसरों से चर्चा करने लगे. उस चर्चा करने के दौरान आपने, आज फलाने ने मुझे एक जगह ले गया, कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा मैंने, क्या अद्भुत दृश्य, क्या अद्भुत वस्तु बना हुआ है, गजब का है. ये आप दूसरों को जो सुनाते हो तो वह स्मरण के द्वारा सुनाते हो, प्रतिविज्ञा के द्वारा नहीं सुनाते हो. वहां प्रतिविज्ञा काम नहीं करती है, केवल स्मृति काम करती है. प्रतिविज्ञा वहां काम करती है, जैसे ये कल देखा था आपने और आज भी इस रूप को यहां देख रहे हैं, तब उसके बीच में जो आपको एक ज्ञान होता है कि ये कल भी देखा था, ये वस्तु कल जो देखा था वही वस्तु आज है, ये वस्तु आज भी प्रत्यक्ष कल भी प्रत्यक्ष हो रहा था. तो दो प्रत्यक्षों के बीच में एक रूपता करने वाला प्रतिविज्ञा है. जैसे ये नोट भी कल देखा था और पेपर वेट भी आपने कल देखा था, लेकिन इन दोनों के बीच में एकता कराएगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में प्रतिविज्ञा संभव नहीं है. स्मृति होगी, कल देखा था, ये नोट की प्रतिविज्ञा होगी, पेपर वेट के पेपर वेट की प्रतिविज्ञा, कल के पेपर वेट और आज के पेपर वेट के बीच में प्रतिविज्ञा संभव है. कल देखा हुआ नोट और आज के देखा हुए नोट में प्रतिविज्ञा संभव है, लेकिन कल देखा हुआ पेपर वेट और आज देखा हुआ नोट के बीच में प्रतिविज्ञा संभव नहीं होता, ये ध्यान रख लेना. क्योंकि प्रतिविज्ञा का मतलब होता है एक ही वस्तु की निरंतरता नित्यता सिद्ध करने वाला जो ज्ञान है उसी को प्रतिविज्ञा कहते हैं। वस्तु के परिवर्तन करने वाला ज्ञान, भिन्नता सिद्ध करने वाला ज्ञान को प्रतिविज्ञा नहीं कहते। ये प्रतिविज्ञा आपको नया सब्जेक्ट सुनने को मिल रहा है, ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ही इस प्रतिविज्ञा का प्रयोग हुआ है। ये स्वतंत्र प्रतिविज्ञा दर्शन ही वेदांत में महत्वपूर्ण दर्शन है। तो ये छठे श्लोक में जो प्रतिविज्ञा आत्मा के बारे में, एक तो नित्यता सिद्ध करने के लिए प्रतिविज्ञा और दूसरा एक रूप सिद्ध करने के लिए प्रतिविज्ञा। ये प्रतिविज्ञा ही आत्मा की एक रूपता सिद्ध करता है और प्रतिविज्ञा ही आत्मा के नित्यता को भी सिद्ध करता है। यह प्रश्न ये हुआ सातवें श्लोक के आरंभ से पहले, प्रत्यभिज्ञा बलाद आत्मा स्थायी निर्धार्यते यदि का नाम प्रत्यभिज्ञा किं वा तस्यः प्रयोजनम्। आपने छठे श्लोक में प्रत्यभिज्ञा के बल से, प्रत्यभिज्ञान के बल से आत्मा को स्थायी माना यानी नित्य माना और आत्मा को एक सिद्ध किया। अब हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि कानाम प्रतिविज्ञा, ये प्रतिविज्ञा मतलब क्या है, प्रतिविज्ञा क्या चीज है। प्रतिविज्ञा से आत्मा को नित्य और एक सिद्ध किया तो पहले तो ये प्रतिविज्ञा क्या चीज है ये हमको समझ में नहीं आ रही है। प्रतिविज्ञा का लक्षण समझाइए और किंवा तस्य प्रयोजनम, प्रतिविज्ञा का प्रयोजन क्या है। तो प्रतिविज्ञा के बारे में दो चीज से अवगत होना चाहता है जिज्ञासु। पहले तो प्रतिविज्ञा का लक्षण से परिचित होना चाहता है, दूसरा प्रतिविज्ञा से प्रयोजन क्या है ये प्रयोजन से परिचित होना चाहता है। प्रतिविज्ञा मानकर क्या प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है, यानी प्रतिविज्ञा के द्वारा हम मुमुक्षुओं के जीवन में कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, ये दो चीज जानना चाह रहा है जिज्ञासु। जैसे गुरु ने कहा कि आज मुझे गाय के दूध पीने की इच्छा है, तुम जाओ जंगल में से गाय का दूध लेकर आओ। जंगल में से ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग करता हूं कि ये आज के जमाने की बात नहीं थी, पहले के जमाने की बात थी कि गाय कोई गृह पशु की तरह घर में बंदी बनाकर नहीं रखा जाता था, तो स्वच्छंद जंगल में वितरण करने वाली होती थी और जिसको दूध की आवश्यकता हो तो वह जंगल से ही दूध लेकर आते थे, गाय का दूध लेकर आते थे। तो गुरु ने कहा कि जाओ गाय का दूध लेकर आओ, गाय का ले आना, आज निर्जला एकादशी है, हम भैंस का दूध नहीं पिएंगे, है गुरुजी ने कहा, गाय का ही ले आना। अब शिष्य ने कहा कि गाय का दूध, गाय कैसी होती है तो हमको तो पता नहीं महाराज, गाय तो हम जानते नहीं है, गाय किसको कहते हैं, कैसी होती है गाय, हमको तो पता नहीं महाराज। तो गुरुजी ने गाय का एक लक्षण बता दिया कि गाय, जाओ गाय सिंह वाली होती है, है? गाय का लक्षण क्या बना दिया, सिंह वाली होती है गाय, गौर श्रृंगत्तम गौर लक्षणम, है सिंह होना गाय का लक्षण है, बता दिया। और वो चला गया जंगल में, संयोग से एक भैंस खड़ा था, उसके सिर में देखा कि सिंह है कि नहीं, सिंह दिखाई पड़ा तो लक्षण मिल गया कि नहीं। जिसके सिर में सिंह हो उसको गाय कहते हैं, इतने लक्षण लेकर वह गाय को खोजने निकला, सामने भैंस दिखाई पड़ा, देखा उसके सिर में सिंह है कि नहीं, देखा बड़े बड़े सिंह थे, तो बोले हां गाय मिल गया, तो गाय का दूध निकालने लग गया वो, भैंस का दूध निकालने लग गया वो। तो दूसरा व्यक्ति सामने आ गया, अरे क्या कर रहे हो आज, बोले आज गुरु जी की इच्छा हो गई, निर्जला एकादशी है, गाय के दूध पीने के लिए कह रहे हैं, गाय का दूध निकाल रहा हूं। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह गाय है, कैसे निश्चय किया तुमने कि ये गाय है? बोले और क्या, गुरु जी ने लक्षण बनाया था जिसके सिर में बड़े सिंह हो, अब गुरु जी ने सौराष्ट्र गाय का लक्षण बना दिया होगा, बड़े बड़े सिंह होते हैं सौराष्ट्र के गाय के, जिसके सिर में बड़े बड़े सिंह हो वो गाय है, देख लो इसके सिर में सिंह है, इसका मतलब गाय है, लक्षण मिल गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये जो लक्षण है ये अपूर्ण लक्षण है, ये लक्षण पूरा लक्षण नहीं है, गाय के किसी माने लक्षण गाय के लिए बनाया गया है और वो लक्षण गाय के अलावा भैंस में भी चला गया तो ये लक्षण को अतिव्याप्ति दोष वाला लक्षण कहते हैं, ये अपूर्ण लक्षण है, ये पूरा लक्षण नहीं है। लक्षण जब अपूर्ण होता है तो इसी तरह धोखा हो जाता है, लक्षण पूर्ण होना चाहिए तभी धोखा नहीं होगा, अधूरा लक्षण जो है उसमें धोखा होने की संभावना है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था लक्षण, वो लक्षण में अतिव्याप्ति दोष हो गया, जिस लक्ष्य में रहना चाहिए था उस लक्ष्य से अतिरिक्त भी जो तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है वहां पर भी लक्षण चला गया, ये अतिव्याप्ति दोष, परिणाम भैंस को गाय मानते हुए दूहने लग गया। तो वो दूसरे व्यक्ति ने निषेध कर दिया कि भैंस है गाय नहीं है, ये बोले लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, तो जाओ गुरुजी से दूसरा लक्षण बना के आओ, ऐसे लक्षण से तो तुम बार बार धोखे खा जाओगे। वो वापस कर चला गया, गुरुजी से कहने लगा। गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है, दूध नहीं लाए, गाय नहीं मिली तुमको? तो गुरुजी आपने जो लक्षण बनाया था लक्षण के अनुरूप एक पशु मिला तो था, लेकिन संयोग से वो लक्षण भैंस के सिर में चला गया, तो भैंस में चला गया तो अतिव्याप्ति दोष हो गया। किसने कहा तुम्हें ये लक्षण गलत हो गया करके? बोले फलाना व्यक्ति ने कहा है। बोले उसने ठीक कहा है, उसने पढ़ा था तुम नहीं पढ़े थे इसीलिए फर्क आ गया। तो ठीक कहा है कि वो लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित होने के कारण लक्ष्य को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होगा। तो अब दूसरा लक्षण बना के देता हूं तुमको, जाओ। तो कैसा लक्षण? गोर कपिलत्वम, तो कपिला कलर होना ये गाय का लक्षण है, जाओ। अब ये लक्षण लेकर चला गया, सामने भैंस खड़ी थी तो सिर में सिंह भी था, लेकिन मिलाने लगा कपिलत्व तो नहीं है, या तो बिल्कुल काली है कपिला नहीं है, छोड़ दिया। फिर दूसरी जगह चला गया तो गाय खड़ी थी, गाय खड़ी थी सिर में सिंह भी था, और संयोग से वो गाय बिल्कुल सफेद थी धवल थी। अब गुरुजी ने लक्षण क्या बनाया था? गाय कपिला होती है, और यहां गाय खड़ी है तो वो लक्षण नहीं मिल रहा है ना, वहां कौन सी गाय खड़ी है सफेद कलर वाली, लक्षण नहीं मिल रहा है, तो वो छोड़ दिए, छोड़कर जा रहा है। मुझे तो गाय का दूध लेना है, तो गाय है ही नहीं, क्यों नहीं है गाय, लक्षण नहीं मिल रहा है, क्यों कह रहे हो लक्षण नहीं मिल रहा? बोले गुरुजी ने कपिला कलर कहा था, ये तो बिल्कुल सफेद है, गाय नहीं है। बोले गुरुजी ने जो दूसरा लक्षण बनाया वो अव्याप्ति दोष से दूषित था, यह भी अधूरा लक्षण है। पहला लक्षण भी अधूरा है इसलिए क्योंकि अतिव्याप्ति हो गया, दूसरा लक्षण भी अधूरा है क्योंकि अव्याप्त हो गया, यावत गाय में नहीं गया। तुम्हारा लक्ष्य है गाय, लक्षण बनाया कपिला, तो सारी गाय कपिला होती है ये नियम तो है ही नहीं, सफेद भी होती है काली भी होती है चितकबरे भी होते हैं कि नहीं, चितकबरे भी होते हैं, तो गाय मात्र में लक्षण न जाने के कारण इसको अव्याप्ति दोष वाला लक्षण मानते हैं। इस दोष वाले लक्षण से भी व्यक्ति धोखे में रहते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति धोखे में आ गया, सामने गाय खड़ी है, प्राप्त होने पर भी लक्षण न मिलने के कारण अप्राप्त होता हुआ निकल रहा है। आप लोगों को भी यही हो रहा है, हाँ, आप लोगों ने परमात्मा के बारे में एक जो लक्षण बना रखा है, बात समझ रहे ना, भगवान के बारे में परमात्मा के बारे में एक लक्षण बना रखा है, वो लक्षण सर्वत्र नहीं मिलता है, तो प्राप्त हुआ हुआ परमात्मा भी आपसे अप्राप्त ही बना हुआ है आज तक। तो आपने लक्षण क्या बना रखा है? बंसी विभूषित करान्नव नीरदा भात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिसके हाथ में बंसरी हो, टेढ़ी टांग वाला हो, है जो जब भी खड़ा होए तो टेढ़ी टांग से खड़ा होए, एक टांग के ऊपर दूसरा टांग लगाए, टेढ़ा खड़ा होवे, हाथ में बांसुरी लेवे, सिर में मोर मुकुट होवे, शरीर में पीला वस्त्र धारण किया हुआ हो, जिसके ओट लाल हो, जिसके शरीर नीरदाभात है, नया मेघ की तरह श्याम वर्ण का हो, आपने ये लक्षण बना लिया। और वो इस हॉल में ये लक्षण से नहीं बैठा है, वो इसी हॉल में बैठा है, लेकिन ये लक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई हाथ नहीं जोड़ता है, राम राम भी नहीं करता है। ले जी, ये सब क्या है? वही तो है जो तुम खोज रहे हो, लेकिन ये जो सामने प्राप्त है ये सब वही कृष्ण, तुमने कृष्ण का परमात्मा का जो लक्षण बनाया वो यहां नहीं मिल रहा है ना। मैं यदि मोर मुकुट लगा दूं, पीताम्बर पहन लूं, हाथ में बांसुरी लूं, टेढ़े टांग करके यहां खड़े हो जाऊं, तो आप दरवाजे से खड़े होते, ए कृष्ण देखो कृष्ण खड़े हैं। आज तो गुरु जी कृष्ण बन गए हैं। ले जी, अरे गुरु तो आज भी कृष्ण ही है, कल भी कृष्ण था और कल भी रहेगा। कपड़ा पहनेगा तो भी कृष्ण है, नंगा रहेगा तो भी कृष्ण है, लाल कपड़ा पहनेगा तो भी कृष्ण है, काला कपड़ा पहनेगा तो भी कृष्ण है। लेकिन आपने जो लक्षण बनाया है उस लक्षण से आप हटोगे नहीं, वो लक्षण अव्याप्ति दोष वाला है। तुम्हारा लक्ष्य कृष्ण है, मोर मुकुट नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य कृष्ण है, बांसुरी नहीं है, लेकिन तुमने लक्षण क्या बनाया? बांसुरी वाला ही कृष्ण होता है, बिना बांसुरी का कृष्ण होता नहीं। ले जी, तुलसीदास जी ने तो ये कर दिया ना, वृंदावन में चले गए भगवान के दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी का दर्शन सब लोग कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, और तुलसीदास जी हाथ भी नहीं जोड़ रहे हैं। सब लोगों ने कहा तुम यहां क्यों आए हो? बोले सब ने कहा कि भगवान यहां है, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूं। तो फिर दर्शन नहीं किया? बोले नहीं। क्यों? बोले भगवान ही नहीं है तो मैं कहां से दर्शन करूं। बोले क्या बात करते हो तुम लोग, बाकी बिहारी सामने खड़े हैं, दर्शन हो रहा है। नहीं भाई, मेरे परमात्मा तो वहां खड़े ही नहीं है। तुलसीदास जी ने तो क्या लक्षण बनाया था परमात्मा के? धनुष्बाण, हाथ में धनुष्बाण लिया हुआ हो वो परमात्मा है। अब वही राम बांसुरी लेकर बैठा हुआ है तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका एक लक्षण था, वो लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित था, अव्याप्ति दोष। अब परमात्मा में कृष्ण में वो लक्षण नहीं गया तो परमात्मा को मानने को तैयार नहीं है वो। सब लोग चले गए, मंदिर बंद होने का समय हो गया, पुजारी ने कहा कि बाबा जाओ दर्शन हो गया ना जाओ, बोले नहीं हुआ है। तुलसीदास जी कहते दर्शन ही नहीं हुआ है, सब लोग चले गए, दर्शन यही तो भगवान है। बोले मैं कैसे मानू, हाथ में धनुष्बाण ही नहीं है तो मैं कैसे मानू। तब तुलसीदास जी हट करके बैठ गए, तब झक मारकर परमात्मा को भी धनुष्बाण उठाना ही पड़ा। तो पुजारी पर्दा लगा इधर उधर चला गया। थोड़ी देर के बाद तुलसीदास जी ने कहा कि अरे पुजारी जी दर्शन नहीं हुआ भगवान का, दर्शन कराओ। तो भगवान समझ गए कि इसका जो हट है उसके इच्छा के अनुसार हमको भी काम करना चाहिए, तो उन्होंने धनुष्बाण लेकर खड़े हो गए, पर्दा हटा दिया। आश्चर्य की बात है, तुलसीदास जी को धनुष्बाणधारी परमात्मा दिख रहे हैं, पुजारी को बंसीधारी वही भंके बिहारी दिख रहे हैं। ले देख ले वही तो है ये, बोलते आ हा हा हा तुलसीदास प्रसन्न धनुष साष्टांग दंडवाद कर रहे हैं, आ जय हो परमात्मा जय हो, बड़ी कृपा हुई है, आज आपके दर्शन मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न होकर भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, पुजारी बांके बिहारी का दर्शन कर रहा है। कहते हैं मूर्ख, बांके बिहारी तो वही का वही है, ये तो भावना से सिद्ध हुआ। लक्षण तो हम लोग जो लक्षण बना रहे हैं वो तुलसीदास जी के जैसे ही लक्षण बना रहे हैं, और यही है कि तुलसीदास के सामने तो भगवान झुक गए, हमारे सामने झुकते नहीं, इसलिए कहते हैं कि भगवान नहीं रहे। कल ही हमसे किसी ने पूछा था कि कुछ लोग कहते हैं महाराज यहां हमको भगवान का दर्शन हो गया है, महाराज क्या आपको भी दर्शन हुआ है? है? हमसे पूछा था कल किसी ने, आपको भी हुआ है? अरे भाई कौन से भगवान की बात करते हो भाई, हम तो उस भगवान को भगवान का दर्शन करते हैं कि जो सारे नाम रूप में अनाम और रूप के रूप में बैठा है, उसका दर्शन कर रहे हैं। हम तो अस्थिवासी प्रिय भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया होगा, पता नहीं कैसा नाम और रूप का भगवान का दर्शन किया होगा, तो वो झूठा भगवान का दर्शन किया है भाई। बात समझ गए कि नहीं? ये वेदांत का रहस्य है, नाम और रूप ये मायाकृत है, और नाम और रूप वाला भगवान का दर्शन किया है तो ये झूठा भगवान का दर्शन किया है, और नाम और रूप को बाध करके यदि दर्शन करोगे तो हम तो नाम रूप का बाध करके भगवान का दर्शन करके बैठे हुए हैं। हम तो अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अस्थिभाति प्रिय यही भगवान है, इसके अलावा कौन सा भगवान चाहते हो तुम? तो गोर कपिलत्वम, तो काली गाय सफेद गाय खड़ी थी लेकिन गाय नहीं मिल रहा है, उसको पूछ रहा है, अरे मुझे आज गाय का दूध लेना है, गुरुजी को गाय का दूध पिलाना है, गाय खोज रहा हूं नहीं मिल रहे। तो सामने वाले ने कहा ये खड़ी तो है गाय। बोले ये कैसे गाय हो सकती है? बोले गाय है ये। बोले लक्षण नहीं मिल रहा है। कौन सा लक्षण? कपिलत्व, ये तो सफेद है, लक्षण है कपिला, कपिला गाय नहीं है। अरे किसने कह दिया कि गाय कपिला होती है? होती है, ऐसा नहीं है कि कपिला होती ही नहीं है, लेकिन कपिलत्व अव्याप्ति दोष वाला लक्षण है। जाओ फिर लक्षण पूछ कर आओ, शुद्ध लक्षण, बार बार धोखा हो रहा है तुमको। दोबारे गुरु के पास गया, गुरु जी ने पूछा कि क्या हुआ, गाय नहीं मिली, दूध नहीं लाए? बोले नहीं मिली महाराज। अरे जंगल में तो गाय जिधर देखो उधर ही है। बोले आपने जो लक्षण बताया मिली नहीं गाय। एक ने कहा कि ये गाय है लेकिन आपका लक्षण नहीं मिल रहा था, वो तो सफेद है, आपने कहा था कपिला, तो मैं कैसे लाता? तब गुरु जी ने कहा फिर तीसरे बार में, गोहो एक सपवत्वम, जिसके खूर नहीं फटा हो वो गाय है। अब गया जंगल में, गाय खड़ी थी, देखता है सबके टांग में सबके खूर फटे हुए हैं, दो हैं, दो फांका हैं खूर के, घूमता हुआ गया, गाय सामने खड़ी है, छोड़ दिया क्योंकि लक्षण नहीं मिल रहा है। एक सफवत्व, तो एक ऊंट खड़ा था उसके पांव में देखा, एक गधा एक गधी खड़ी थी उसके पांव में देखा, है यहां तो गाय गाय है, हैं ऊंट भी गाय और गधा भी, क्योंकि लक्षण मिल रहा है कि नहीं, एक सफवत्व, उसके खूर फटे हुए नहीं होते, गधे के भी नहीं फटते, घोड़े के भी नहीं और ऊंट के भी नहीं, हैं मिल गया गाय मिल गया। बड़े प्रसन्न होके गधी को रोक रहा है दूध निकालने के लिए, दूसरे व्यक्ति ने फिर देख लिया, क्या कर रहे हो? बोले गाय के दूध निकाल रहा हूं। अरे किसने कह दिया ये गाय है? बोले लक्षण मिल रहा है देखो, एक सफवत्व। अरे बेटा ये तो असंभव लक्षण है, ये तो संभव ही नहीं है, एक सफ वाला लक्षण लेकर तुम गाय खोजने जाओगे तीन काल में, संभव ही नहीं है, जाओ गुरु से फिर कहो कि शुद्ध लक्षण बनाकर दो। तो रोता हुआ गया, गुरुजी आप मुझे बार बार भटका रहे हो, सही लक्षण बना कर दो। जब भी लक्षण बनाते हो गलत ही लक्षण बन रहा है, जब भी लक्षण बनाते हो गलत लक्षण बना रहा है। कभी भैंस मिलती है, कभी गधा मिल जाता है आपके लक्षणों से, कभी गाय मिलता है तो भी नहीं छूट जाता है, वो मिले हुए गाय भी छूट जाता है। तब गुरु ने विचार किया कि अब ठीक आ गया, ये इसको सही लक्षण बना देना चाहिए। तो गौर शासनाधिमत्तम, गाय के गले में एक गलतम्बल होता है, झोल होता है झुलता हुआ, वो गाय है। अब ये और किसी में भी नहीं होता है, भैंस में भी नहीं, गधे में भी नहीं, ऊंट में भी नहीं, और ये झुलता हुआ कम्बल जो झुलता हुआ है उसको शासन बोलते हैं संस्कृत भाषा में। वह काली गाय में भी मिलता है, सफेद में भी मिलता है, और चितकबरे में भी मिलता है, कबिला में भी मिलता है, गाय के अलावा और जगह नहीं मिलता, यावत गाय में रहता है गाय। ये जो है शुद्ध लक्षण है, तब जाकर गाय उसको प्राप्त होता है, तब वो धोखे में नहीं रहता। तो यहां आपने प्रतिविज्ञा की जो बात कही है कि दो वस्तुओं में एकता सिद्ध करने के लिए पहले देखे हुए वस्तु में और आज देखे हुए वस्तु में ये वही है, ये सिद्ध करने के लिए प्रत्यभिज्ञान आपने कहा। प्रत्यभिज्ञान से दो चीज सिद्ध होता है, एक तो आत्मा की नित्यता सिद्ध हो जाता है, दूसरा आत्मा की अद्वितीयता सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये प्रत्यभिज्ञान का लक्षण क्या है, वो लक्षण हमको ठीक से बता दीजिए, उसके बारे में कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Idangadi Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayana. Thank you. ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारत के महान संत जिनका नाम इडंगडियार है, उनकी कहानी सुनेंगे। तमिलनाडु की यह कथा अत्यंत प्राचीन है। चेरभूमि में कोनाडु राज्य की राजधानी कोडमपालूर नगरी थी। आदित्य चोल के पूर्वज इडंगडियार कोडमपालूर से अपने राज्य का संचालन करते थे। उनके जीवन का लक्ष्य था प्रभु की भक्ति और संतों की सेवा। उन्हीं के राज्य में शिव भक्त थे, जिनके जीवन की साध थी कि हर हालत में प्रतिदिन शिव भक्तों को भोजन कराना। जब अपने पास साधन समाप्त हो गया तो भक्तों को भोजन कराने के लिए राजा के एक कोठार से, कोठार यानी उनकी धन जहां एकत्र किया जाता है या फिर जहां पर संचालित किया जाता है वह स्थान, कोठार से वे उनसे धन या धान चुराने लगे। राज कर्मचारियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़कर राजा इडंगडियार के समान प्रस्तुत किया। राजा ने उससे प्रश्न किया, आप शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में क्यों धान चुरा रहे हैं? शिव भक्त बोले, मैंने प्रभु के भक्तों को भोजन खिलाने का व्रत ले रखा है। उस व्रत को निभाने में बाधा आने पर, ऐसा करने पर मजबूर हूँ। इडंगडियार इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, भक्त की प्रशंसा करते हुए बोले, आप ही हमारे लिए सच्चे भंडार हैं और सेवा धन को निभाने के लिए उनकी आवश्यक सेवा सहायता की। प्राचीन शिलालेखों से पता चलता है कि देवस्व और राजस्व के रूप में धान के अलग अलग भंडार होते थे। राजकीय कर नकद या धान के रूप में दिया जा सकता था। अधिकतर कृषक धान के रूप में कर देते थे। स्थान स्थान से प्राप्त धान को लाद कर राजधानी ले जाना लाभप्रद नहीं था, अतः राज्य की ओर से जनकल्याण से के किसी भी सेवा कार्य तथा मजदूरों को मजदूरी देने आदि के लिए कोठार में जमा धान का उपयोग किया जाता था। राजा के कोठार से संतों को भोजन कराने के लिए धान देने वाले शिव भक्त का तप भी अद्भुत था। उन्होंने निर्भाग भाव से कहा, संतों को जब भोजन नहीं मिलता तो उन्होंने खिलाने का कर्तव्य राजा का होता है। हर कोई फरियाद लेकर राजा के पास नहीं पहुंच सकता, विशेषकर संत लोग अपने किसी पाप के लिए राजा के द्वार पर नहीं जाएंगे। ये तो अपनी भूख की चिंता भी नहीं करते। यदि ऐसे संतों को भूखा रखा जाए तो यह स्थिति राजा और राज्य के लिए अनिष्टकारी होगा, यहाँ तक कि राज्य ही नष्ट हो सकता है। इसलिए संतों की भूख मिटाने के लिए मैंने राजकोष से दान का उपयोग करना पुण्य का कार्य समझा। राजा इस तर्क से खुश हुए। इस तर्क को हम चाहे स्वीकार न करें, पर राजा इडन कलियार ने इसे ज्ञान का मार्ग समझा और सादर नमस्कार करके कहा, धान से भरा भंडार ना भंडार है, कुनों से भरे आप भी हमारे लिए सच्चे भंडार हैं। समाज के सम्यक संचालन के लिए कर्म का लक्ष्य और कर्म का मार्ग दोनों महत्वपूर्ण है। शिव भक्त ने उस प्राचीन काल में अपने लक्ष्य को ही महत्व दिया। इस पौराणिक गाथा में भक्त की असीम निष्ठा और राजा का संतों और भक्तों के प्रति विनय का भाव प्रमुख है। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।